0: व्याह, खुशी या किसी भी खास मौके लिए ज्वेलरी होनी चाहिए है खास, तो ना ज्वेलर्स लेके आए नी लेटेस्ट गोल्ड, डायमंड, बुलियन, सिल्वर ते ब्राइडल कलेक्शन, हर स्टाइल ते हर ओकेजन ले जेन्युइन ज्वेलरी, जेन्युइन प्राइसिंग ते वधिया कस्टमर सर्विस दे नाल। गोल्ड ज्वेलरी ते फास्ट लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल। विजिट करो 5/150 फार्मर्स रोड त्रुगनीना, 347 लॉन्सडेल स्ट्रीट डैंडीनोंग, तुन्ना ज्वेलर्स, परोसे दी निशानी।
1: वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है, मेनू भी दस दे सीक्रेट।
2: अमृत, ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड घी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं, बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
1: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड घी अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।

0: ब्रोकर्स। अपने इंश्योरेंस से हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा। कॉल 0491-999-555। शर्ता लागू।
1: टेंशन टेंशन निरी टेंशन।
2: की होया?
1: अथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे नी।
2: काका जी टेंशन छड़ो, फोन चको, कॉल करो वीवा इमिग्रेशन नू, जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा, इम्प्लॉय स्पॉन्सर, पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा, स्किल्ड माइग्रेशन, स्टूडेंट वीजा, MRT या RRT अपील ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने। हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
1: या 90-77-93-33
2: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au।
1: याद रखो 9077-9733।
2: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट,
1: हर कदम तुआडे नाल।
0: किचन द स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो। आ गया ZJ स्टोन मेसन, तुआडे घर नु बनाए एकदम क्लासी। असी बनाउने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ वी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलदी है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुन ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड, मेल्टन।
3: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
4: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमिग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू PR दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, AAT अपील्स, स्किल्ड वीजा, PR, US विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
3: नंबर दा दे बंसल इमिग्रेशन वालियां दा।
4: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
5: ਆ ਕਿੱਥੇ ਵੱਜ ਗਈ ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ?
4: ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂ, ਪਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੀਗਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਰਦੇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਗਾ ਕਿਵੇਂ?
5: ਤੇਰੇ ਵਾਂਗ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿੰਘ ਸਮੈਸ਼ ਰਿਪੇਅਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਾਇਰਸ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਟੀਮ, ਆਲ ਮੇਜਰ ਐਂਡ ਮਾਈਨਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਵਾਰੰਟੀ ਨਾਲ, ਵਰਕ ਐਂਡ ਪੇਂਟ, ਫ੍ਰੀ ਲੋਨ ਕਾਰ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਆਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਂਡ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਕੰਮ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਸ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 0383-85-7048 ਤੇ। ਸਿੰਘ ਸਮੈਸ਼ ਰਿਪੇਅਰ, 8 ਗ੍ਰੇਸ ਵੇ, ਰੈਵਨ ਹਾਲ।
0: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਤਾਂ AI ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਖੁਦ ਕਿਉਂ? ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਡਿਲੇ ਇਨ ਲਾ ਇਜ਼ ਡੈਮੇਜ ਇਨ ਲਾਈਫ। ਫੈਮਿਲੀ ਇਸ਼ੂ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਕੋਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੈਟਰ, ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਜੋ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੰਸਲ ਲਾਇਰਸ। ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ, ਸਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਤੇ ਜਿੱਤ ਆਪਣੀ। ਕਾਲ 4229058 60 ਔਰ ਵਿਜ਼ਿਟ bansallawyers.com.au।

ये चूल्हा, ये चौका, ये झाड़ू, ये बर्तन, ये आटा बटाटा, ये गड़बड़ गुलाटा और ये और वो और धर तेरे की। पर सब दिन हो तन एक समान पंछी, काहे होत उदास। एक रोज

0: आसान नहीं, पर सही सलाह नाल हर चैलेंज आसान हो सकता है। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे नाल ने ATO ऑडिट्स, टैक्स डिस्प्यूट्स, ATO डेट्स, बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग ते बिजनेस खरीदन जा वेचन संबंधी प्रोफेशनल गाइडेंस। अपने बिजनेस नु देओ मजबूत दिशा, आज ही विजिट करो sebipartners.au। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स, तुहाडे बिजनेस दे भरोसेमंद टैक्स एडवाइजर्स।
1: मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपने हर भैन भरा नु उना दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसी एथे इंडियन मसाले, दालां, ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते ले सकदे हो। पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम वी, नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार, मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394। दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच।
2: ऑस्ट्रेलिया च अपना घर लेना है या कंस्ट्रक्शन करवानी है, मॉर्गेज रीफाइनेंस करवानी, नवी कार खरीदनी या बिजनेस नो आगे बढ़ाना है, ता टेंशन क्यों? टू फोल्ड लेंडिंग डैंडीनोंग है ना। होम लोन तो रीफाइनेंसिंग तक, कंस्ट्रक्शन लोन तो बिजनेस लोन या कार लोन, हर लोन ले 40 तो वध लेंडर्स दे नाल तुहाडे लई बेस्ट डील, लो क्रेडिट स्कोर वेलकम। कॉल राज 0494-763-700 और व्हाट्सएप 2Fold Lending।

तरफ तो वैसे पिछले कुछ महीनों तो रोकिया हुआ सी, पर इस दरमियान सरकार दे उत्ते जेड़े सवाल उठ रहे सी, अरावली भारत दी सब तो पुरानी पहाड़ी जिहड़ियां चोटियां ने उन्हां दे विचों एक है। पीटीआई दे विच जारी खबर दे मुताबक इत्थे खदान दा काम करन दे नाल हालात जिस किस्म दे पैदा हो गए ने उस दीआं तस्वीरां सांझीआं कीतीआं गईआं ने। मारां दे हवाले दे नाल दिल्ली तों गुजरात तक फैली अरावली दीआं पहाड़ियां दे दायरे च 20 लाख लीटर पानी जमीन दे अंदर पहुंच सकदा हर साल, पर इस जिहड़ी पहाड़ी इलाका है इस दे विच खदाना दा काम हो रहा है जिसके चलदे पहाड़ियां नूं तोड़िया जा रहा है। वैसे भी केंद्र सरकार ने हुण नवीं परिभाषा जारी कीती सी कि 100 मीटर या उस तो घट उच्चियां जिहड़ियां उन्हां नूं पहाड़ियां नहीं मन्निया जाएगा। सो जाहिर जी गल है कि उत्थे खदाना दा काम बड़ी आसानी दे नाल हो पा रहा है। उथे ही पंजाब दे नाल जुड़ी खबर की सांझ पाईए ते जबर जनाह दे कथित दोषां च घिरे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे मैंबर ते अकाली आगू अमरजीत सिंह चावला ते अकाल तख्त दे वधीक मुख ग्रंथी ज्ञानी मलकीत सिंह दे खिलाफ कार्रवाई करदिआं अकाल तख्त ने दोवां नूं पंथ दे विचों छेक दित्ता। सिख संगत नूं इन्हां दे नाल कोई सांझ ना रखण दे हुक्म दित्ते गए ने। फैसला अकाल तख्त दे कार्यकारी जथेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज वल्लों पंज सिंह साहिबानां दी इकत्रता तों बाद अकाल तख्त दी ही फसील तों सुनाया गया। भारत पंजाब दीआं खबरां दी विस्तार अगे चल के प्रीतम सिंह रूपाल होरी सांझे करनगे, पर आओ आस्ट्रेलिया दीआं खबरां दे वल चलदे हां। पहलां ओह खबर जिस दे वल इशारा कीता जा रहा सी कि आस्ट्रेलिया दी इस वार यूनाइटेड नेशन दी जनरल असेंबली सैशन यानी संयुक्त राष्ट्र दा जिहड़ा महासभा इजलास है उस दे विच शमूलियत किन्नी अहम है। इस करके क्योंकि आस्ट्रेलिया दे प्रधानमंत्री इत्थे पहुंच चुके ने अमरीका दे विच, और अमरीका दे विच ओह यूनाइटेड नेशन दे एक होर महत्वपूर्ण और सब तो महत्वपूर्ण अदारे अज दी तरीक दे विच तां जिस किस्म दा जंगा दा माहौल बनिया होया उस दे विच सिक्योरिटी कौंसल जिस च 5 ही पक्के मैंबर ने पर घटो घट कच्चे मैंबर दे तौर ते जिन्हां नूं गेस्ट मुल्क भी या फिर ऑब्जर्वर मुल्क भी कह लिया जांदा उस दे तौर दे उत्ते आस्ट्रेलिया दी बिडिंग यानी आस्ट्रेलिया दी दावेदारी पेश करन दे लई पहुंचे होए ने। प्रधानमंत्री कैनबरा दे डिजिटल सेफ्टी दे क्लाइमेट चेंज दे ते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दे रेगुलेशन दे उत्ते जिहड़े ट्रैक रिकॉर्ड ने उहनां नूं भी यूनाइटेड नेशन दे जनरल असेंबली सैशन दे विच रखणगे, पर इस दरमियान उहनां दी अमरीकी सदर दे नाल मुलाकात भी है। किवें गल्लबात करनगे उहनां दे नाल क्योंकि अमरीकी राष्ट्रपति तां हमेशा इह चाहुंदे ने कि जिहड़ियां अमरीकी कंपनियां ने उहनां नूं फायदा मिले चाहे किसे दूसरे देश दे विच जिवें मर्जी नुकसान हुंदा होवे। अजिहे दे विच मेटा गूगल वर्गियां कंपनियां जिन्हां दे उत्ते इह दावा कीता जा रहा है कि आस्ट्रेलिया दे विच चंगी लगाम लगा के रखी जा रही है चाहे 16 साल तो घट उम्र दे बच्चियां दे लई सोशल मीडिया खातियां दी पाबंदी होवे, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉज दे अंदर जिहड़ियां तब्दीलियां होण, ते चाहे जिस दिन उन्हां ने उडान भरी सी उसे दिन इह कानून के मेटा दे स्मार्ट ग्लासिस दा जिहड़ा इस्तेमाल है उह पब्लिक जिहड़ियां बिल्डिंग्स ने उन्हां दे विच नहीं कीता जाएगा। ऐसे बहुत सारे ऐलान जिहड़े ने अमरीका ने पिछे जे कीते ने। अमरीकी राष्ट्रपति इस तों खुश नहीं होणगे, पर दूसरे पासे सब तों अहम मसला जिहड़ा आस्ट्रेलिया दे लई ओह इह है कि यूनाइटेड नेशन दे इस जनरल असेंबली सैशन दे विच आस्ट्रेलिया अपनी बिडिंग दायर करेगा साल 2029 ते 2030 दे लई, यानी 2 सालां दे लई आस्ट्रेलिया जिहड़ा सिक्योरिटी कौंसल दा जिन्हों सलामती कौंसल भी कह लिया जाता है उसका जिहड़ा ऑब्जर्वर मुल्क बनना चाहता है। वैसे इस दे वास्ते जिहड़ियां वोटां ने ओह साल 2028 दे मध्य तो पहला पहला पै जाणगियां, पहले मध्य तो पहला पहला, पर आस्ट्रेलिया नूं लॉबिंग हुणे तो करनी होएगी, अलग अलग देशां नूं अपने हक दे विच लियाना होएगा। क्योंकि आखिरी वार भी जदों आस्ट्रेलिया ने यह दावेदारी अपने कोल रखी सी 2013-14 दे विच उदों भी रूस दे उत्ते बड़े इल्जाम लगे सी, उदों जिहड़ियां मलेशिया दी एयरलाइन फ्लाइट सी MH17 उस नूं रूसी मिजाइल दे राहीं फुंडन दा जिहड़ा इक मामला दुनिया भर च चर्चा दा विशा बनिया सी। उदों आस्ट्रेलिया ही यूनाइटेड नेशन दी सिक्योरिटी कौंसल दा ऑब्जर्वर मुल्क सी ते रूस दे खिलाफ चंगियां जिहड़ियां कारवाइयां ओह कीतियां गईयां सी सिक्योरिटी कौंसल दे विच, भावें कि रूस खुद सिक्योरिटी कौंसल दा पक्का मैंबर है। अजय दे विच हुण एल्बनीज आस्ट्रेलिया दे रोल नूं किन्नी शिद्दत दे नाल आस्ट्रेलिया ने पिछली बार निभाया सी उस नूं
ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਗੇ ਔਰ ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕ ਫਿਨਲੈਂਡ ਆਪਣੀ ਦਾਅਵੇ

0: जे तुसी बीमार हो ता एआई कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लई कर देने, बंसल लॉयर्स। तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।
1: ऑस्ट्रेलिया च अपना घर लेना है या कंस्ट्रक्शन करवानी है, मॉर्गेज रीफाइनेंस करवानी, नवी कार खरीदनी या बिजनेस नो आगे बढ़ाना है, तो टेंशन क्यों? टू फोल्ड लेंडिंग डैंडीनोंग है ना, होम लोन तो रीफाइनेंसिंग तक, कंस्ट्रक्शन लोन तो बिजनेस लोन या कार लोन, हर लोन ले 40 तो वध लेंडर्स दे नाल तुहाडे लई बेस्ट डील, लो क्रेडिट स्कोर वेलकम। कॉल राज 0494-763-700 और व्हाट्सएप टू फोल्ड लेंडिंग। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपने हर भैन भरा नु उना दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसी एथे इंडियन मसाले, दाला, ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते ले सकदे हो। पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम भी, नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार, मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394। दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच।

0: ऑस्ट्रेलिया च अपना घर लेना है या कंस्ट्रक्शन करवानी है, मॉर्गेज रीफाइनेंस करवानी, नवी कार खरीदनी या बिजनेस नो आगे बढ़ाना है, तो टेंशन क्यों? टू फोल्ड लेंडिंग डैंडीनोंग है ना, होम लोन तो रीफाइनेंसिंग तक, कंस्ट्रक्शन लोन तो बिजनेस लोन या कार लोन, हर लोन ले 40 तो वध लेंडर्स दे नाल तुहाडे लई बेस्ट डील, लो क्रेडिट स्कोर वेलकम। कॉल राज 0494-763-700 और व्हाट्सएप टू फोल्ड लेंडिंग।
1: Attention, ladies and gentlemen, this is your captain. 30 flights, Melbourne to India या Pakistan, Sydney to India या Pakistan कितने भी जा सकती है।
2: Attention, please. दिल कहता है कर जाना है। Flight search करके थक गए। Switch करो Hi-Fi Travel Stay, your local travel agency. Rated 4.9 star on Google. Book now, pay later. Flight book करनी है? आज ही call करो 1300-533-311 ते या online book करो hi-fi-travels.com.au ते।
3: जी तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं, डॉक्टर कोल जाने हो। फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, delay in law is damage in life. फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लई कर देने, बंसल लॉयर्स, तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 4229058 60 और विजिट bansallawyers.com.au।

फिल्म तो ठीक ठाक जी सी, पता नहीं बदी है नहीं कह नहीं सकते, आई कांट, मैं देखनी भी नहीं। फिल्म सी जी सिमी चाल दी ते मैंडी तखड़ दी ते उदे चो ही यह गाना, आई डोंट नो किदे चो है यह गाना, टुट पैनी इंग्लिश ते गाने वैसे ठीक ठीक जी सी, कोई अड्डा हाँ पता नहीं केड़ा कह जा गाना है।

0: ஆபரேஷன் தான் மசலா. நான் ஜாவோ இதர் உதர் சித்தையாவ் ஐஎம்இ அட்வைசர். அப்படி மாபோலி வித் சம்ஜன் துஹாட்டி லோடு. நாளை வரையா தோ ஸ்கில் விசா 186-189-190-482-491. ஸ்கில் அசஸ்மெண்ட், பார்ட்னர் விசா, பேரண்ட் விசா, ஜஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட் விசா தோ பிஆர் தக். ஹர் இமிகிரேஷன் ப்ராசஸ் லி எக்ஸ்பர்ட் கைடன்ஸ். ஆஜ் ஹி பரோசே நாள் சம்பர்க் கரோ. ஐஎம்இ அட்வைசர் கால் 02-9063-1618. ஹுன் பேராமேட்டா சிட்னி அதி நியூ டெல்லி விச் வி. ஐஎம்இ அட்வைசர்.
1: Thinking of building your dream home? Make it truly grand with Kaplan Homes Ultimate Prosperity Package. Get top 10 grand upgrades in one unbeatable package price, including 3-meter ground floor ceilings, 2.7-meter top floor ceilings, large porcelain tiles, premium timber look flooring, grand feature doors, stylish black finishes, and smart keyless entry. Plus, a lifetime structural guarantee. Limited time only. Visit Kaplan Homes online or one of our display homes in Sydney. TNC Supply. License 184-812.
2: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
3: और जो हुकम मेरी सरकार।
2: ओ आ किधर? हैरी स्पार्क वाल जाना। तुसी आ किथे जा रहे हो?
3: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
2: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
3: आहो जी आहो।
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सन विच वी तुहाडी सेवा विच।
4: यार तू इत्थे इन्नी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
5: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। इन्ना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
4: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
5: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हम दो दो लोकेशन पे मिलेंगे।
1: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूसरी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स सैंडविच भी तुम्हारी सेवा विच। ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन का मसला ना जाओ इधर उधर, सदे आओ आईएमई एडवाइजर, अपनी माँ बोली विच समझण तुम्हारी लोड़ नु। नाले वरिया तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा, जो स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ली एक्सपर्ट गाइडेंस। आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02-9063-1618 और पैरामेटा सिडनी अति न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर।

0: So much power in the universe.
1: Radio Haji 1674.
2: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
3: और जो हुकम मेरी सरकार।
2: ओ आ किधर? हैरी स्पार्क वाल जाना। तुसी आ किथे जा रहे हो?
3: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
2: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
3: आहो जी आहो।
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सन विच वी तुहाडी सेवा विच।
4: थिंकिंग ऑफ बिल्डिंग योर ड्रीम होम, मेक इट ट्रूली ग्रैंड विद कैपलन होम्स अल्टीमेट प्रॉस्पेरिटी पैकेज। गेट टॉप 10 ग्रैंड अपग्रेड्स इन वन अनबीटेबल पैकेज प्राइस, इंक्लूडिंग 3 meter ग्राउंड फ्लोर सीलिंग्स, 2.7 meter टॉप फ्लोर सीलिंग्स, लार्ज पोर्सिलिन टाइल्स, प्रीमियम टिम्बर लुक फ्लोरिंग, ग्रैंड फीचर डोर्स, स्टाइलिश ब्लैक फिनिशेस एंड स्मार्ट कीलेस एंट्री, प्लस अ लाइफटाइम स्ट्रक्चरल गारंटी। लिमिटेड time only. Visit Kaplan Homes online or one of our display homes in Sydney. TNC supply. License 184812.

This is Ali Asghar here on Radio Haji 1674 AM. सुनते रहिए, सुनाते रहिए, बजाते रहिए, जो करना है करिए.

0: जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने, बंसल लॉयर्स। तुहाडा भरोसा, साडा तजरबा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।
1: व्याह, खुशी या किसी भी खास मौके लिए ज्वेलरी होनी चाहिए है खास, तो ना ज्वेलर्स लेके आए ने लेटेस्ट गोल्ड, डायमंड, बुलियन, सिल्वर ते ब्राइडल कलेक्शन, हर स्टाइल ते हर ओकेजन ले। जेन्युइन ज्वेलरी, जेन्युइन प्राइसिंग ते वधिया कस्टमर सर्विस दे नाल गोल्ड ज्वेलरी ते फास्ट लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल। विजिट करो 5/150 फार्मर्स रोड त्रुगनीना, 347 Lonsdale Street, Dandenong। तुन्ना ज्वेलर्स, भरोसे दी निशानी।
2: यार तू इत्थे इन्नी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
3: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमिग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू PR दी राह भी विखाई। इन्ना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, AAT अपील्स, स्किल्ड वीजा, PR, US विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
2: नंबर दा दे बंसल इमिग्रेशन वालियां दा।
3: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो बंसल इमिग्रेशन .com.au।
0: सोना चाहिदा,
4: भरोसा चाहिदा,
0: क्वालिटी ते बायबैक भी चाहिदा, चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे 22 कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी, पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत, कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493-536-042।
5: मैनू अपनी नवी दुकान ली प्रीमियम 3D इल्यूमिनेटेड साइन दी अर्जेंट लोड सी। क्विक साइनेज ने इन हाउस डिजाइन, प्रिंटिंग ते प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन सिर्फ 4 to 5 दिनां विच पूरी कर दित्ती। ग्लोइंग शॉप फ्रंट तो व्हीकल रैप्स तक ब्रांड पूरी स्ट्रीट विच सब तो वख चमक उठिया। विक्टोरिया ते साउथ ऑस्ट्रेलिया विच 12 सालां तो साइनेज लीडर्स, अपने बिजनेस नू चमकाओ। कॉल 1300-151616 quicksignage.com.au। ऑन रोड्स ऑनर्स कैंपेन सिर्फ सीमित समय ले, हुन नवा BYD कार ले आओ शानदार ड्राइव अवे ऑफर्स दे नाल। BYD C-Line 7 प्रीमियम सिर्फ $54,990, BYD C-Line 8 डायनामिक FWD सिर्फ $56,990 ते BYD Shark 6 प्रीमियम सिर्फ $57,900। एक खास ऑफर 1 अगस्त to 30 सितंबर 2026 तक ऑर्डर करन वाले लिए है, डिलीवरी 31 अक्टूबर 2026 तक। हो जानकारी ले आज ही BYD कैरोलाइन स्प्रिंग्स नाल संपर्क करो एंड मेंशन रेडियो हांजी। BYD ऑन रोड्स ऑनर्स, कंडीशन अप्लाई।
0: किचन दा स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन।

0: 0410 045 555 या आज ही विजिट करो 104 Collins Road, Melton.
1: ओपाजी, एक पासे मॉर्गेज उते ग्रोसरी ते हुन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी रॉकेट बन गए ने।
2: हुन टेंशन छड़ो जी, गवर्नमेंट दी नवी बैटरी रिबेट नाल हुन सोलर ते बैटरी लगवाना हो गया होर भी आसान। बिजली दा बिल कट, टेंशन भी कट।
1: फिर लवाइए कित्थो?
2: सन करंट वालिया कोलो 2012 तो मेलबर्न दी एक भरोसेमंद अते अवार्ड विनिंग सोलर कंपनी।
0: आज ही सन करंट नो कॉल करो ते अपना फ्री असेसमेंट बुक करो 0406-021-246 ते।
3: टेंशन निरी टेंशन
1: की होया?
3: अथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं।
1: काका जी टेंशन छड़ो, फोन चको, कॉल करो वीवा इमिग्रेशन नू, जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा, इम्प्लॉयर स्पॉन्सर, पार्टनर या पेरेंट्स, या वीजा, स्किल्ड माइग्रेशन, स्टूडेंट वीजा, MRT या RRT, अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने। हुणे अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
3: या 90-77-97-33
1: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au।
3: याद रखो 9077-9733
1: Viva Immigration and Education Consultant,
3: हर कदम तुहाडे नाल।
4: Smith's Lane by Movekvich, अपने भविष्य की शुरुआत करो, हुणे कदम चुको अते Smith's Lane दे चुने हुए लॉट्स ते सीमित समय लई मिलन वाले $30,000 तक दी लैंड रिबेट दा फायदा लवो। चुनवे योग लॉट्स ते हाउस एंड लैंड पैकेज बुक करन ते हिस्सा लै रहे बिल्डर्स वल्लों वाधू $15,000 डिस्काउंट मिल सकदा है। ए ऑफर 15 सितंबर 2026 नू खत्म है, अजे हे मौके ज्यादा देर नहीं रहंदे। होर जानकारी लई अज ही smithslane.mirvac.com ते जाओ। नियम शर्तां अते योग्यता दे मापदंड लागू हन। ऑफर 15 सितंबर 2026 नू खत्म है।
5: चलदी दा नाम गड्डी, आते सुनिया ही होना। ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे, उनु चलाउण लई ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स, अलॉय व्हील्स ले। याद रखो टायर फोर्स, जिन्हां कोल लॉग बुक सर्विसिंग, मैकेनिकल रिपेयर्स, इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने। तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप टायर फोर्स, यूनिट 1, 19-25 सुमर्टन रोड, कैंपलफील्ड। कॉल 0390-8665 और विजिट tireforce.com.au।
6: आ किथे वज गई तेरी गड्डी?
7: गड्डी ता ठीक हो जू, पर इंश्योरेंस वालिया नू, लीगल वालिया नू एथे प्रदेश विच समझाऊंगा किवे?
6: तेरे वांग किन्ने ही अपने भैन भरावां दी टेंशन मिंटां च दूर कीती है सिंह स्मैश रिपेयर वालिया ने। इन्हां दे कोल अपनी मां बोली च काम करन वाले लॉयर्स दी फ्री ऑफ कॉस्ट टीम, ऑल मेजर एंड माइनर एक्सीडेंट दा लाइफ टाइम वारंटी नाल, वर्क एंड पेंट, फ्री लोन कार दी सर्विस मिलदी है, ऑल प्राइवेट एंड इंश्योरेंस ऑथोराइज्ड काम ते। फ्री लीगल एडवाइस लई कॉल करो 0383-85-77-48 ते। सिंह स्मैश रिपेयर, 8 ग्रेस वे, रेवन हॉल।
8: ऑस्ट्रेलिया च अपना घर लेना है या कंस्ट्रक्शन करवानी है, मॉर्गेज रीफाइनेंस करवानी, नवी कार खरीदनी या बिजनेस नो आगे बढ़ाना है, तो टेंशन क्यों? टू फोल्ड लेंडिंग डैंडीनोंग है ना। होम लोन तो रीफाइनेंसिंग तक, कंस्ट्रक्शन लोन तो बिजनेस लोन या कार लोन, हर लोन ले 40 तो वध लेंडर्स दे नाल तुहाडे लई बेस्ट डील, लो क्रेडिट स्कोर, वेलकम। कॉल राज 0494-763-700 और व्हाट्सएप 2Fold लेंडिंग।
9: बिजनेस चलाना आसान नहीं, पर सही सलाह नाल हर चैलेंज आसान हो सकता है। सेबी पार्टनर्स, वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे नाल ने। ATO ऑडिट्स, टैक्स डिस्प्यूट्स, ATO डेट्स, बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग ते बिजनेस खरीदन जा वेचन संबंधी प्रोफेशनल गाइडेंस। अपने बिजनेस नो देओ मजबूत दिशा, आज ही विजिट करो sebipartners.au। सेबी पार्टनर्स, वाइज टैक्स एडवाइजर्स, तुहाडे बिजनेस दे भरोसेमंद टैक्स एडवाइजर्स।
10: वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है, मैनू भी दस दे सीक्रेट।
11: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेरी दे प्योर न्यूजीलैंड घी दा, न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स, बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
10: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड घी अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।

ये चूल्हा, ये चौका, ये झाड़ू, ये बर्तन, ये आटा बटाता, ये गड़बड़ गुलाता और ये और वो और धर तेरे की। पर सब दिल हो तन एक समान पंछी, काहे होत उदास। एक

ब्रोकर्स अपने इंश्योरेंस की हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा कॉल 0491-999-555। गिद्दा इंश्योरेंस शर्ता लागू।

0: मेलबर्न तो इंडिया या पाकिस्तान, सिडनी तो इंडिया या पाकिस्तान, कितने भी जा सकती है।
1: अटेंशन प्लीज, दिल कहता है कर जाना है, फ्लाइट सर्च करके थक गए, स्विच करो हाई फाई ट्रेवल से, योर लोकल ट्रेवल एजेंसी, रेटेड 4.9 स्टार ऑन गूगल। बुक नाउ पे लेटर, फ्लाइट बुक करनी है आज ही कॉल करो 1300-533-311 ते, या ऑनलाइन बुक करो highfivetravels.com.au ते। बिजनेस चलाना आसान नहीं, पर सही सलाह नाल हर चैलेंज आसान हो सकता है। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे नाल ने, ATO ऑडिट्स, टैक्स डिस्प्यूट्स, ATO डेट्स, बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग ते बिजनेस खरीदन जा वेचन संबंधी प्रोफेशनल गाइडेंस। अपने बिजनेस नो देओ मजबूत दिशा, आज ही विजिट करो sebipartners.au। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स, तुहाडे बिजनेस दे भरोसेमंद टैक्स एडवाइजर्स।
2: On Roads Honors Campaign सिर्फ सीमित समय लई, हुन नवा BYD कार ले आओ शानदार ड्राइव अवे ऑफर्स दे नाल। BYD C-Lion 7 प्रीमियम सिर्फ $54,990, BYD C-Lion 8 डायनामिक FWD सिर्फ $56,990 ते BYD Shark 6 प्रीमियम सिर्फ $57,900। एक खास ऑफर 1 अगस्त तो 30 सितंबर 2026 तक ऑर्डर करन वाले लई है, डिलीवरी 31 अक्टूबर 2026 तक। हो जानकारी लई आज ही BYD कैरोलाइन स्प्रिंग्स नाल संपर्क करो एंड मेंशन रेडियो हांजी। BYD On Roads Honors, कंडीशन अप्लाई।

0: ब्रोकर्स अपने इंश्योरेंस से हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा कॉल 0491-999-555 गिद्दा इंश्योरेंस। शर्ता लागू।
1: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com।
3: मैनू अपनी नवी दुकान ली प्रीमियम 3D इल्यूमिनेटेड साइन दी अर्जेंट लोड सी। क्विक साइनेज ने इन हाउस डिजाइन, प्रिंटिंग ते प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन सिर्फ 4 to 5 दिनों विच पूरी कर दित्ती। ग्लोइंग शॉप फ्रंट तो व्हीकल रैप्स तक ब्रांड पूरी स्ट्रीट विच सब तो वख चमक उठिया। विक्टोरिया ते साउथ ऑस्ट्रेलिया विच 12 साल तो साइनेज लीडर्स। अपने बिजनेस नू चमकाओ, कॉल 1300-151616 quicksignage.com.au।

0: हूँ।
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंज,
0: यानी उन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन से मिलेंगे।
1: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स टनविच भी तुहाडी सेवा विच। ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना, जाओ इधर उधर, सिद्धे आओ आईएमई एडवाइजर, अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा, जा स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक, हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस, आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02-9063-1618 और पैरामेटा सिडनी अति न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर।
2: हां जी 1674 है।

ब्रोकर्स अपनी इंश्योरेंस की हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा कॉल 0491-999-555 गिद्दा इंश्योरेंस शर्ता लागू।

0: टेंशन टेंशन मेरी टेंशन
1: की होया
0: अथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं।
1: काका जी टेंशन छड़ो, फोन चको, कॉल करो वीवा इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा, इम्प्लॉयर स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा, स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा, MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने। हुणे अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
0: या 90-77-93
1: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au।
0: याद रखो 9077-9733।
1: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट,
0: हर कदम तुहाडे नाल।

0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड घी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसे भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड घी अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।

मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपने हर भैन भरा नूं उनां दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसीं एथे इंडियन मसाले दालां ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते लै सकदे हो। पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम भी नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394 दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच व्याह खुशी या किसी भी खास मौके लिए ज्वेलरी होनी चाहिए है खास तुन्ना ज्वेलर्स लेके आए ने लेटेस्ट गोल्ड डायमंड बुलियन सिल्वर ते ब्राइडल कलेक्शन हर स्टाइल ते हर ओकेजन ले जेन्युइन ज्वेलरी जेन्युइन प्राइसिंग ते वधिया कस्टमर सर्विस दे नाल गोल्ड ज्वेलरी ते फास्ट लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल। विजिट करो 5/150 फार्मर्स रोड त्रुगनिना अते 347 डॉन स्टील स्ट्रीट डैंडीनोंग ज्वेलर्स परोसे दी निशानी।

0: यार तू इतनी इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: ब्रोकर्स। अपने इंश्योरेंस से हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा। कॉल 0491-999-555। शर्ता लागू
1: की चाहिदा। ऑस्ट्रेलिया दा वीजा लोना जा वीजे ले मशवरा चाहिदा।
0: मिल जुगा, सिद्धे आओ गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस। ऑस्ट्रेलिया विच हर तरह दिया वीजा लोड़ा ले एक परोसे योगना जो स्टडी वीजा, स्किल्ड वीजा, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा, डामा, पेरेंट पार्टनर ते विजिटर वीजे विच डील कर देने। हुणे कॉल करो प्रतिंदर गरेवाल नू 0490-054-596। गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस .com.au ते जाओ। आओ थोड़ा कोई हल करिए।
2: हाँ जी हाँ जी, ओए हाँ जी हाँ जी।

कुछ यादें ऐसी होती हैं जो हमेशा ताजा रहती हैं, कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो आपकी जिंदगी के साथ साथ चलते हैं, कुछ गीत ऐसे होते हैं जिनको गुनगुनाने के लिए दिल हमेशा बेचैन सा रहता है। ऐसे ही चंद लम्हे और कुछ गीतों के साथ मैंने अपना बचपन, मैंने अपना जीवन गुजारा है और आज भी ये गीत मेरे दिल के करीब है, क्लोज टू माई हार्ट।

0: attention, ladies and gentlemen. This is your captain. 30 flights, Melbourne to India या Pakistan, Sydney to India या Pakistan कितने भी जा सकती है.
1: Attention please. दिल कहता है कर जाना है. Flight search करके थक गए. Switch करो Hi-Fi Travels से. Your local travel agency. Rated 4.9 star on Google. Book now, pay later. Flight book करनी है? आज ही call करो 1300-533-311 से या online book करो hifitravels.com.au से.
2: ओपा जी, एक पासे मॉर्गेज उते ग्रोसरी ते हुन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी रॉकेट बन गए ने.
3: हुन टेंशन छड्डो जी, गवर्नमेंट दी नवी बैटरी रिबेट नाल हुन सोलर

0: टेंशन टेंशन निरी टेंशन
1: की हुआ
0: अथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे नी
1: काका जी टेंशन छोड़ो फोन चको कॉल करो वीवा इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा इम्प्लॉय स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने हुणे अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
0: या 90-77-93
1: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au
0: याद रखो 9077-9733
1: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट
0: हर कदम तुहाडे नाल।

0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत एक कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
2: हाँ जी हाँ जी ओए हाँ जी हाँ जी
3: हाँ जी रेडियो

सुनै दुख पाप का नास, सुनै ईश्वर ब्रह्मा इंद, सुनै मुख सलाहन मंद, सुनै जोग जुगत तन भेद, सुनै शास्त्र सिमरत वेद, नानक भगता सदा विगास, सुनै दुख पाप का नास, सुनै सत संतोख ज्ञान, सुनै अठ सठ का इस

सुनै सेख पीर पातशाह, सुनै अंधे पावे राह, सुनै हाथ होवे असगा, नानक भगतां सदा विगा, सुनै दुख पाप का नास, मन्ने की गत कई न जाय, जे को कह पिछे पछताय, कागत कलम ना लिख।

ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए। पंच परवान पंच प्रधान पंचे पावे दरगे मान, पंचे सोहे दर राजान, पंचा का गुर एक त्यान। जे को कह करे विचार करते कह करने नाही सुमार। तौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रखिया जिन सूत। जे को बुझै होवै सचियार तौलै उपर केता पार। धरती होर प्रै होर तिस्ते पार तलै कमन जोर। जी

एक बार जो तुझ पावै साई पली का, तू सदा सलामत निरंकार, असंख जप असंख पाओ, असंख पूजा असंख तपताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पाकसार, असंख मोन लिव लाए तार, कुदरत कौन कहा विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद पावे साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख मूर्ख अंध कोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवट हत्या कुमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कुड़ियार कूड़े फिराए, असंख मलेच्छ मल पाख खाए, असंख निंदक सिर करे पार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद पावे साई पलीका, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कै सिर पार होए, अखरी नाम अखरी सालाह।

ओ मरै ना ठागे जाए, जिन कै राम वसै मन माहे, तिथै भगत वसे के लोए, करे आनंद सच्चा मन सोए, सचखंड वसे नंकार, कर कर वेखै नदर निहाल, तिथै खंड मंडल वर भंड, जे को कथै का अंत।

आप श्रीमुख वाग्पाद सहित छपे संतो प्रसाद चक्र चेनी हर वर्ण जात हर पात निंजय रूप रंग हर रेख पे को कह न सकत कह अचल मूर्त अनुभव प्रकाश संतोष कह जय कोट इंद्र इंद्रान सा सहान गणित जय तिर भवन में सुर नर सुर नेत नेत बंतरन कहत तब सर्व नाम कथे कवन कर्म नाम वर्ण सुमत जाम क्रिया छंद नमस्तंग अकाले नमस्तंग कृपाले नमस्तंग रूपे नमस्तंग अनूपे नमस्तंग अभेखे नमस्तंग अलेखे नमस्तंग अकाये नमस्तंग अजाये नमस्तंग अगंजय नमस्तंग अभंजय नमस्तंग अडामे नमस्तंग अठामे नमस्तंग अकर्मंग नमस्तंग अतर्मंग नमस्तंग अनामंग नमस्तंग अतामंग नमस्तंग अजीते नमस्तंग अभीते नमस्तंग अभाये नमस्तंग अडाये नमस्तंग अनिले नमस्तंग अनादे नमस्तंग अछेदे नमस्तंग अगाजे नमस्तंग गंजे नमस्तंग भंजे नमस्तंग उदारे नमस्तंग अबारे नमस्तंग सुएक नमस्तंग अनेक नमस्तंग अभूते नमस्तंग अजूपे नमस्तंग निर्कर्मे नमस्तंग निर्भर्मे नमस्तंग निर्देशे नमस्तंग निर्भेषे नमस्तंग निर्नामे नमस्तंग निर्कामे नमस्तंग निर्धाते नमस्तंग निर्घाते नमस्तंग निर्दूते नमस्तंग अभूते नमस्तंग अलोके नमस्तंग अशोके नमस्तंग निर्तापे नमस्तंग अथापे नमस्तंग त्रिमाने नमस्तंग निदाने नमस्तंग अगाये नमस्तंग अबाये नमस्तंग त्रिवर्गे नमस्तंग असर्गे नमस्तंग प्रभोगे नमस्तंग संजोगे नमस्तंग अरंगे नमस्तंग अभंगे नमस्तंग अगमे नमस्तरमे नमस्तंग जलाशय नमस्तंग निराशय नमस्तंग अजाते नमस्तंग अपाते नमस्तंग अमजवे नमस्तस्त अजवे अदेशंग अदेशे नमस्तंग अभेशे नमस्तंग नितामे नमस्तंग निर्वामे नमो सर्वकाले नमो सर्वद्याले नमो सर्वरूपे नमो सर्वभू नमो सर्व खापे नमो सर्व थापे नमो सर्व काले नमो सर्व पाले नमस्तस्तु देवे नमस्तंग अवेवे नमस्तंग अजन्मे नमस्तंग सुबन्मे नमो सर्व गौणे नमो सर्व पौणे नमो सर्व रंगे नमो सर्व पंगे नमो काल काले नमस्तस्तु द्याले नमस्तंग अवर्णे नमस्तंग अमरणे नमस्तंग जरारंग नमस्तंग कृतारंग नमो सर्वदंदे नमो सतबंदे नमस्तंग निर्साके नमस्तंग निर्भाके नमस्तंग रहीमे नमस्तंग करीमे नमस्तंग अनंते नमस्तंग महंते नमस्तत रागे नमस्तंग सुहागे नमो सर्व सोखं नमो सर्व पोखं नमो सर्व कर्ता नमो सर्व हर्ता नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्व दयाले नमो सर्व पाले चात्री चांतो प्रसाद अरूप हैं अनूप हैं अजू हैं अभू हैं अलेख हैं अभेक हैं अनाम हैं अकाम हैं अदय हैं अभय हैं अजीत हैं अभीत हैं त्रिमान हैं निदान हैं त्रिवर्ग हैं असर्ग हैं अनिल हैं अनाद हैं अजय हैं अजाद हैं अजन्म हैं अवर्ण हैं अभूत हैं अभर्ण हैं अगंज हैं अभंज हैं अजूज हैं अजंज हैं अमीक है रफीक है अदंध है अबंध है निर्बूज है असूज है अकाल है अजाल है अला है अजा है अनंत है महंत है अलीक है निरश्रीक है निर्लंब है असंभ है

ते अनंगी अनामे समस्ति स्वरूपे प्रभंगी परमाते समस्ति प्रभूते कलंक विनाने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजे सवरंग परम रूपे नमो जोग जोगे सवरंग परम सिद्धे नमो राज राजे सवरंग परम बिरदे नमो शस्त्रपाने नमो

अप्रेत देवे सुतर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो साहंग नमो पूपे नमो दान दाने नमो मान मानंग नमो रोग रोगे नमस्तंग स्नानंग नमो मंत्र मंत्रंग नमो जंत्र जंत्रंग नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रंग सदा सच्चिदानंद सर्व प्रणाशी अनूपे अरूपे सुमस्तल निवासी सदा सिद्ध दा बुद्ध दा बिर्ध करदा अधो उर्ध अर्धंग अगग उग हरता परं परं परमेश्वरं प्रोचपालं सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयारं अछेति अपेदी अनाम अकामं समस्तो पराजी समस्तस्त तामं तेरा जोर चातुरी छंद जलय है थलय है अभीत है अभय है प्रभु है अजू है अदेश है अवेश है प्रियांग पुरा छंद गादे अबादे आनंदी स्वरूपे नमो सब माने समस्ती निदाने नमस्त्वंग निनाथे नमस्त्वंग परमाथे नमस्त्वंग अगंजे नमस्त्वंग अभंजे नमस्त्वंग अकाले नमस्त्वंग अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो साहे नमो माय माय नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोग रोगे नमो शोक शोके नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतं नमो सर्व पीतं नमो सर्व ज्ञानं नमो सर्व

अमृत कर में अमृत तर में रख जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल तरमंग अलख करमंग सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पाने सर्वंग माने सर्वंग प्राणंग सर्वंग त्राणंग सर्वंग भुक्ता सर्वंग जुगता सर्वंग देवंग सर्वंग पेवंग सर्वंग काले सर्वंग पाले रुआल छंद तो प्रसाद आद रूप अनाद मूर्त अजोन पुरख अपार सर्व मंत्र मान देव अभेद आद उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व कोपन काल जत तत्र विराज ही अब दूत रूप रसाल नाम ठाम ना जात जाकर रूप रंग न रेख आद पुरख उदार मूर्त अजोन आद से देश अरना पेश जाकर रूप रेख न राग जात्र तात्र दिशा विशा हुए फैलो न राग नाम काम बहिर पेख ताम हो न जाए सर्व मान सर्वत्र मान सदैव मानु ताए एक मूर्त अनेक दर्शन की।

कालान कान अनुभूत अंग अभावंगत में तो पार गुण गण उदार मुन गण बरनाम निर्भय निरकाम अद्भुत प्रचंड मित गत अखंड आलछे कंस आदि श्री तरम सर्वां परनांडिये अंडंड भांडिये चाचरी चंतो प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंकरियम निर्नामे अकामे यंग प्रिया छंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र परती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र मानिए चतर चक्र जानिए चाचरी छंद न सत्रे न मित्रे न परमंग न पित्रे न कर्मंग न काये अजन्मंग अजाये न चित्रे न मित्रे पर है पवित्र प्रतिशय अधीरशय अदृशय अकृशय भगवती छंतो प्रसाद कथते के आछे जदेश के आभे जमेश के आगा जिकर्म के आ

सर्वा अवर्ण के जगतं कृति है के छत्रं छत्री है के ब्रह्मं स्वरूपे के अनुपव अनुपे के आद अदेव है के आप अभेव है के चक्रं बहीन है के एक अधीन है के रोजी रजा के रही में रहा कै के पाक बेअब है के गैब गैब है के अफल गुना है के साहल सुना है के कारण कुनंद है के रोजी दहंद है के राजग रहीम है के कर्मं करीम है के सर्वं कली है के सर्वं दली है के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र दानी है के सर्वत्र गौण है के सर्वत्र पौण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पैसे के सर्वत्र राज्य के सर्वत्र साजे के सर्वत्र दीने के सर्वत्र लीने के सर्वत्र जाओ के सर्वत्र भाओ के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पैसा के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज्य के सर्वत्र शोक है के सर्वत्र पोख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है।

सरबत रपेशा के सरबत रमानिया सदावंग प्रदानिया के सरबत जापिया के सरबत रथापिया के सरबत रपाने के सरबत रमान के सरबत इंद्रा के सरबत चंद्रा के सर्वंग कलीमय के परमंग फहीमय के अकाल अलामय के साहेब कलामय के हुसन वजू है तमामल रजू है हमेशा सलाम है सली खुदमदाम गरीब उल शिकस्ते गरीब उल परस्ते बुलंदर मुकाने जमीन उल जुमाने तमीज़ुल तमाम रजूअल निदाने हरीफुल अजीम रजाय यकीन अनेकल तरंग है अभेद है अभंग है अजीज़ुल निवाज है गनीमुल खिराज है निरका स्वरूप है त्रिमुक्त भूत है प्रभगत प्रवाह है सो जुग सुदा है सदैव स्वरूप है अभेदी अनूप है समस्तो पराज है सदा सर्वसाज है समस्तल सलाम है सदैवल कलाम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है ओं आदरूप है अनाद स्वरूप अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिभर्गन त्रिभादे अगजे अगाधे सुभंग स्वरूपागे सुसर्वान रागे तेरे पुगत स्वरूप है अच्छे जय छूत है कि नरकम परनाश है पृथ्वी परवास है निरकत परवाह है सदैव सदा है बेपुगत स्वरूप है पर जुगत अनूप है निरकत सदा है बेपुगत परवाह है अनुगत स्वरूप है पर जुगत अनूप है चाचरी छंद अभंग है अनंग है अभेख है अलेख है अभर्म है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अभय है अभूत है अदूत है अनास है उदास है अधंध है अभंध है अभक्त है विरक्त है अनास है प्रकाश है अनचिंत है सुनित है अलिख है अधिक है अलेख है अभेख है अडा है अगा है असंभ है अभंग है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है अजात है चारपट चंतो प्रसाद सर्वं हंता सर्वं गंता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता सर्वंग हर्ता सर्वंग कर्ता सर्वंग प्राणंग सर्वंग त्राणंग सर्वंग कर्मंग सर्वंग धर्मंग सर्वंग जुक्ता सर्वंग मुक्ता रुआल चंद तो प्रसाद नमो नरगनासे सदैव प्रगासे अनंग स्वरूपे अभंग भूते परमात्म परमाते सदा सर्वसाते अगाध स्वरूपे निर्बाध भूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोत्रे न पुत्रे न सत्रे न मित्रे न ताते न माते न जाते न पाते निर्साग शरीक है अमितो अमिक है सदैव परवाह है अजय है अजा है भागवती छंद तो प्रसाद के जाहिर जहूर है के हाजर हजूर है मेशल सलाम है समस्तल कलाम है के साहिब दिमाग है के उसने चराग है के कामल करीम है के राज करीम है के रोजी दहंद है के राज करहंद है करीमुल कुमाल है के हुसन जमाल है गनीमुल खराज है गरीबुल निवाज है हरीफुल शकन है हिरासल फकन है कलंकं परनास है समस्तल निवास है अगंजल गनीम है रजायक रहीम है समस्तल जुबा है के साहिब के राह है के नरकं परनास है बिस्तल निवास है के सर्वल गवन है के हमेशल रवन है तमामल तमीज है समस्त अधीश है परंग परंग ईश है समस्त अधीश है अदेसल अलेख है अभेसल अभेख है जमीन जुमा है अमीकुलुमा है करीमल कुमाल है के जुर जमाल है के अचलंग प्रकाश है के अमितो सुभाष है के अजब स्वरूप है के अमितो प्रभूत है के अमितो प्रसा है के आत्म प्रभा है के अचलंग अनंग है के अमितो अभंग है मद भार छंद तो प्रसाद मन मन प्रणाम गुणगन मुदाम हर भर अगंज हर नर प्रभंज अन गण प्रणाम मन मन सुनाम हर नर अखंड भर नर अमंड अनभव अनास मन मन प्रकाश गुणगन प्रणाम जलथन मुदाम अनछिज अंग आसान अभंग उपमा पार गत मित उदार जल थल अमंड दिस विस अभंड जल थल महंत दिस विस बेअंत अनपौ अनास त्रित तर तुरास आजान वा एक सदा ओंकार आद कथनी अनाद खल खंड

अंठन अबार आडीठ तरम अत टीठ करम अन बरन अनंत दाता मंत हर बोल मना संतो प्रसाद करना ले आर काले है कल खंडल है मैं मंडल है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व वारण है तृत के तरण है जग के करण है मनमानीय है जग जानीय है सर्वंकार है सर्वंकार है सर्वपाशी है सर्वनाशी है करुणाकर है विश्वंभर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है कल खंडस है परते पर है करुणाकर है अजपाजप है अतपातव है अकृताकृता है अमृतामृता है अमृतामृता है करुणाकृत है अकृताकृता है तरणीतृत है अमृतेश्वर है परमेश्वर है अकृताकृत है अमृतामृत है अजभाकृत है अमृतामृत है नर नायक है कल गायक है विश्वंभर है करुणालय है निर्म नायक है सर्वपायक है पाव पंजन है अर्गंजन है रिपतापन है जब जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कृताकर है हरताहर है परमात्म है सर्वात्म है आत्म बस है जस के जस है प्रियांग प्रिया छंद नमो सूर सूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बिंदे नमो बीज बीजे नमो राज संताम संक्षात रूपे नमो परंग ततंग अतंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो त्यान त्याने नमो जुद जुद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो पूज पूजे नमो पान पाने नमो कले कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादंगूते कलंकार रूपे अकलंकार अलंके नमो आसे आसे नमो भांग भंगे अभंगी स्वरूपे अनंगी नामे त्रिभंगी त्रिकाले अनंगी कामे एक अश्री छंद अजय अलय अभय अभय अभू अजू अनास अकाश अगंज भंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अभेख अनाम अकाम अगा अडा अनाथे परमाथे अजूनी अमूनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मंग अभर्मंग अगजे अलेखे प्रियांग प्रजा छंद नमस्तुल प्रणामे समस्तर प्रणासे अगंजन अनामे समस्तल निवासे निर्कामंग बभूते समस्तं स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सोतर्मंग प्रभूते सदा सचदानंद सतरंग प्रणासी करीमल कुरंदा समस्तल निवासी अजाय बभूते गजायब गनी में हरियं करियं करीम रही में चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते सुयंबं सुमं सर्वदा सर्वजुगते दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अभंग भूते दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदा

0: श्री पद श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे। वीर अपार बड़े बड़े आर अवतार इसार की धार बछैया, तोर देश बुलंद बवासन माते के जान के मान मलैया, गाड़े गड़ान के तोरण हर सुबातन ही चकचार लवैया, साहेब श्री सबको सिर नायक जाचक अनेक सो एक दवैया, दानव देव फिनन निशाचर पोत पविख पवान जपेंगे, जीव जिते जल में थल में पल ही पल में सब थाप थपेंगे, पुन प्रताप अनबार जय तुन पापन के बहु पुंज खपेंगे, सात समूह प्रसन्न फिरे जग सत्र सब अब लोग जपेंगे, मानव इंद्र गजिंद नरातम जोन त्रलोक को राज करेंगे, कोट स्नान गजात गदान अनेक स्वमर साज भरेंगे, ब्रह्म हेश्वर विष्णु सची पत अंत बसे जम्फास भरेंगे, जे नर श्री पत के प्रस है भगते नर फेर न दे तरेंगे, काम भयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहो भगत ध्यान लगायो, नहात फिरो लिए सात समुद्रन लोग गयो पर लोग गो आयो, बास कियो बखियान सु बैठ कै ऐसे ऐसे बैस बतायो, साच को सुन लियो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो, कहूं ले पायन पुत्रो सिर कहूं ले लिंग ले ढलकायो, कहूं लिखियो हर अवाची दिशा में कहूं पुछा को शीस नवायो, को बुतान को पूजत है पास को मृतान को पूजन तायो, कूर क्रिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को पेद न पायो, कूर क्रिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को पेद न पायो।
1: कवियो बाज बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरण मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुठ सबे तुम कावो, आप हाथ दे मोहि बचावो, सुखी वसे मोरो परवारा, सेवक सिख सबे करतारा, मोर इच्छा निज कर दे करिया, सब बैरन को आज संगरिया, पूर्ण होए हमारी आशा और भजन की रह प्यासा, तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याओ, जो बर चाहो सो तुम ते पाओ, सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है, आप हाथ दे मुझे उबरिया, मरण काल का त्रास न वरिया, पूजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस्तु जो करियो रच्छा, राख लो

दसकंता काल पाए ब्रह्मा बपरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर विष्ण प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जमन काल जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा ज्योतियो जमन काल सब लोक सुवारा नमस्कार है ताए हमारा जमन काल सब जगत बनायो देव दैत जचन उपजायो आद अंत एक है अवतारा सोई गुरु समझो हमारा नमस्कार किसी को हमारी सकल प्रजा जिन आप सुवारी शिवकन को शिवगुण सुख दियो सतन को पलमो बद कियो काट काट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पहचानत टीटी ते कुंचर अस्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतम दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पहचाने काट काट के पट पट की जाने जब उदकर करा कर तारा प्रजा तरत तब दे अपारा जब आकर्ष करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ जेते बदन

निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभ ताका मूड उचारत पेदा जा को पेव न पावत बेदा ताको कर पाहन अनमानत महामूड किछ भेद न जानत महादेव को कह सदा शिव निरंकार कर चिंत नहीं पेव आप अपनी बुद्ध है जेती बरनत पिन पिन तोय तेती तुमरा लखा न जाए पसारा कह सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंग प्यो राव कई पूपा अंडज जे राज से तजकिनी उत्पुज खान बहु रज दीनी कहो फू राजा है बैठा कहो सिमट पयो शंकर कैठा सगरी सृष्ट दिखाए चंभव आज जुगा स्वरूप सुजंभव आव रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रन काता जे आज तो तब सरनी परे तिन के दुष्ट दुख्त है मरे पुरख जवन पाग परे तिहारे तिन के तुम संकट सब तारे जो कल को एक बार तिहाय है ताके काल निकट नहीं आए है रच्छा होए ता सब काला दुष्ट अरिष्ट तरे तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहे न हर हो।

तही गुणी संसार परम सुत्ता सुत्या रहन विहानी गुर कृपा ते से जन जागे जिन्ना हर मन वसिया बोले अमृत बाणी कह नानक सो तत पाए जिसनु अंधन हार।

माया अगन सावी को जई करता खेल लचाया जांत सपाना ता जमया परिवार भला पाया लिव छुड़की लगी तरसना माया अमर वरताया ए माया जित हर विसरै मोह उपजै पौ दूजा लाया कह नानक।

0: गुरु जी का खालसा वाहि गुरु जी की फतेह।
1: सतगुरु जुगो जुग अटल, ताकत चावर शत्र जी दे मालक, दसा पातशाहियां दी आत्मक जोत, समुची मनुखता दे सांझे रहवर साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी च जुड़ बैठी गुरु रूप खालसा साध संगत जी सारे रसना पवित्र करो, गज के आखो वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। अज आपां सारे गुरु रामदास पातशाह दे दर ते आए हां ते साडी मंग भी एहो ही चाहिंदी है, तेरी पनहे खुदाए तू बख्शंदगी शेख फरीदा खैर दी जय बंदगी। हे गुरु रामदास सच्चे पातशाह साडी झोली दे विच बंदगी दी दात पा दे, नितनेम दी दात पा दे, क्योंकि संसार चलो चली दा मेला है, ए शरीर जेड़ा नाशवंत है, बारह बरस बालपन बीते, बीस वर्ष कश तपना कियो, तीस वर्ष कश देवना पूजा, मेरी मेरी करते जन्म गयो, बारह साल तक बचपन दी उम्र बालपन दी उम्र मनी जांदी है, बालपन नू जवानी खा जांदी है, ते जवानी नू खालसा जी बुढ़ेपा खा जांदा है, ते बुढ़ेपे तो बाद फिर मौत दा आउणा तां अटल है, जरूरी नहीं कि बुढ़ेपे तो बाद मौत आवेगी, कई माता दे पेट विच ही गल सड़ जांदे ने मर जांदे हन, बड़े बड़े अहंकारियां नानक गर्भ गले, बड़े बड़े अहंकारी लोग माता दे गर्भ दे विच ही गल जांदे हन। खालसा जी ग्रंथां दे विच लिखिया होया है, जरा पाओ ना हो सकी जरा अवस्था माहे, भवसागर के तरन को तरन अवस्था आहे। जरा नाम बढ़ेपे दा है, बढ़ेपे दे विच तेथों जरा जन्ना भी अपानी होना भवजल तरन वास्ते, क्योंकि बढ़ेपे दे विच शरीर हड्डां दी मुठी हो जांदा है, कमजोर हो जांदा है, जिवें बाबा फरीद साहब ने कहा सी कि जदों मैं जवान हुंदा सी इन्हां पैरां नाल चल के वड्डे वड्डे पर्वत पहाड़ां ते चढ़ जांदा सी, अज बुढ़ेपा आ गया है, मेरा लोटा मंजे दे नेड़े पिया है, परंतु मैथों चुकिया नहीं जा रहा, क्योंकि हुण नेड़े पिया लोटा ही सौ को लगदा है। अज फरीदा कुजड़ा सह कोहा थेओ। सो इस करके खालसा जी जिहड़ी भवसागर नूं तरन दी अवस्था है, जवानी दी अवस्था ही है, जवानी दी उम्र दे विच जिन्ना नाम जप लवांगे, क्योंकि शरीर नरोग हुंदा है, ताकत हुंदी है, उन्ना ही चंगा है, ये नहीं भी बालपन च नाम नहीं जपना। ध्रुव ते प्रहलाद ने बालपन दे विच ही जपिया, राम जपो जी ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जपिओ हर जैसे, वो साडे लई उदाहरण बन गए ने। इस करके जिन्ना लाहा लिया जावे उन्ना थोड़ा है, क्योंकि शरीर जेड़ा नाशवंत है। अज सचखंड श्री हरिमंदर साहब जी दे विच्चों हुक्मनामा जो आया है, जो गुरु साहब दा हुक्म है बड़हंस राग दे विच तीसरे पातशाह गुरु अमरदास सानू कलयुग दे जीवां नू उपदेश दे रहे हन, आओ प्रेम सहित सरवण

ने गुरु की शरण तक ली। जेड़े गुरु की शरण विच आ गए, गुर राखे से उभरै, होर मर जमै आवै जाए, उभरे तो भाव तर जांदे हन संसार रूपी भवसागर विचों। जेड़े गुरु की शरण च आउंदे ने, जेड़े गुरु के शब्द का उटासरा तकदे ने, होर मर जमै आवै जाए। जेड़े गुरु के शब्द का उटासरा नहीं तकदे, होरना दे विच प्रीति लाउंदे ने, कोई हन्ने दी, कोई बन्ने दी, कोई पहाड़ा वाली रन्ने दी, ढोल ढमका सरवर दा, ऐसे मनुख बार बार जमदे हन, मरदे हन, टेढ़ियां जूना चाउंदे जांदे रहिंदे हन। परंतु जेड़े गुरु की शरण च आ गए, ओ संसार रूपी भवसागर दे विच उहनां दे जीवन का वेड़ा तर जांदा है।

बिना नाम तो खालसा जी शांति नहीं मिल सकती, पीस ऑफ माइंड मन की शांति नहीं मिल सकती। बिन नावै सुख ना होई, होर मर जमे आवै जावै, होर जेड़े हन होरना दे विच प्रीति लाउण वाले द्वैत विच पए हुए मनुख बार बार जमदे ने, बार बार मरदे ने, ते अंत दे समय पछताउणा करदे हन। जदों अंत दा समा आउंदा है जमा दी मार दा बड़ा भयानक दुख सहना पैंदा। कबीर जम का ठेंगा बुरा है, ओ नहीं सहया जाए, एक जो साधु मोहि मिले तिन लिया अंचल लाए। वख वख ग्रंथां दे विच दस्या होया है जे 70,000 बिच्छू कट्ठा डंग मारे जम इक डंडा मारे इक बराबर है। बिच्छू इन्ना जहरीला हुंदा है, एक बिच्छू किसी दे डंग मार जे सुरत टिकाने नहीं रहन दिंदा। जे 70,000 कट्ठा डंग मारे किन्ना खालसा जी की हालत होवेगी। भाव के इन्ना जमा दी मार दा जमा दे डंडे दा दुख है। सो जेड़े ता गुरु दी शरण तक लैणगे उबर जाणगे, भाव तर जाणगे संसार रूपी समुंदर चों। नहीं तां फिर जेड़े भाई होरना नाल प्रीति लाउणगे जिन्हां दी द्वैत भाव जिन्हां दे अंदर है, ओ मरणगे जमणगे ते अंत दे समय जमां दीआं मारां खांदे होए पछताउणगे, क्योंकि नाम तो बिना सुख

आपके जीवन में मंगल ही मंगल हो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ, ऐसी प्रार्थनाओं के साथ श्री हनुमान जी के चरणों में आपका ये दास आपकी तरफ से प्रार्थना करता है। स्वागत है आपका पुण्य दर्शन में। मैं हूं आपका दास। आध्यात्मिक ज्ञान के सागर से ज्ञान के कुछ मोती चुनकर आप तक लाने का प्रयास करता है आपका ये दास। पिछले दिनों कितने व्यस्त थे हम सब भाई, फेस्टिवल्स थे, उत्सव थे, होना तो बनता ही है। मित्रों, जब हमारे जीवन में उत्सव आते हैं, हम क्या क्या नहीं करते। हम घर सजाते हैं, मंदिर जाते हैं, प्रसाद बनाते हैं, भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, कीर्तन करते हैं और पूरे परिवार के साथ खुशियां मनाते हैं। किंतु कभी आपने सोचा है कि ये उत्सव होते क्यों हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि साल में कुछ दिन हमें खुशी मनाने के लिए एक दिन मिल जाए या मौका मिल जाए? बिल्कुल नहीं। सनातन परंपरा में उत्सव का एक बहुत सुंदर उद्देश्य है, हमें भगवान की याद दिलाना, हमें भगवान से युक्त करना। हमारी डेली लाइफ में हम काम, परिवार और अपनी जिम्मेवारियों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि भगवान को याद करना कहीं पीछे छूट जाता है। ऐसे में उत्सव हमें फिर से भगवान के पास आने का अवसर देते हैं। उत्सव यानी हम में उत्साह भर देता है। आपने देखा होगा या महसूस किया होगा, जब फेस्टिवल आ जाते हैं उसके आने से पहले ही हम कितने उत्साही हो जाते हैं कि फेस्टिवल आने वाला है, उसकी तैयारियां करो, उसके लिए शॉपिंग करो। उत्सव हमें याद दिलाता है कि हमारा जीवन केवल भौतिक सुखों के लिए नहीं है। भगवान की लीलाओं को सुनना, उनका नाम लेना, उनके लिए कुछ करना और उनके भक्तों के साथ मिलकर आनंद मनाना, यही उत्सव का असली आनंद है। प्रत्येक उत्सव हमें यही कहता है, यही सिखाता है कि हम थोड़ा रुकें, भगवान को याद करें, उनके नाम का कीर्तन करें। इसीलिए चाहे जन्माष्टमी हो, राधा अष्टमी हो, नवरात्रि हो या फिर अन्य कोई धार्मिक उत्सव, इनका वास्तविक सौंदर्य तभी है जब इसके माध्यम से हमारे भीतर भगवान के प्रति श्रद्धा और सेवा का भाव बढ़े। उत्सव बाहर की सजावट या सिर्फ मिठाइयां खाना या अच्छा अच्छा भोजन करना, उपहार देना, ये उत्सव नहीं है। ये तो आप कभी भी कर सकते हैं। असली उद्देश्य है भीतर की भावना में भगवान को अपनी डेली लाइफ में युक्त करना, भगवान के साथ जुड़ना। जो हमें बजरंग बली यानी हनुमान जी कितना प्यारा अपना उदाहरण देकर समझाते हैं, उनके जीवन से सीखिए। अगर आप हनुमान जी को मानते हैं तो उनका कहना भी मानिए, उनको फॉलो कीजिए। आजकल ये भौतिक जो है ना, फॉलो करो, लाइक करो, शेयर करो, अरे फॉलो करना है तो हनुमान जी को फॉलो करो। उनसे सीखिए कि कैसे प्रभु श्री राम की भक्ति में अपना पूरा जीवन, तन मन धन सब अर्पित। एक ही लक्ष्य जीवन का कि मेरे प्रभु श्री राम कैसे प्रसन्न होंगे, कैसे मैं उनकी सेवा कर सकता हूं, और जिस चीज में श्री राम नहीं है वो मेरे लिए व्यर्थ है। आइए आनंद लेते हैं एक सुंदर से भजन का। आगे बातचीत जारी रखेंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।

0: सुन रहे हैं पुण्य दर्शन।
1: किथे वज गई तेरी गड्डी?
2: गड्डी तो ठीक हो जू, पर इंश्योरेंस वालियां नू, लीगल वालियां नू इत्थे प्रदेश विच समझाऊंगा किवें?
1: तेरे वांग किन्ने ही अपने भैन भरावां दी टेंशन मिंटां च दूर कीती है सिंक स्मैश रिपेयर वालियां ने। इन्हां दे कोल अपनी मां बोली च काम करन वाले लॉयर्स दी फ्री ऑफ कॉस्ट टीम, ऑल मेजर एंड माइनर एक्सीडेंटल लाइफ टाइम वारंटी नाल वर्क एंड पेंट, फ्री लोन कार दी सर्विस मिलदी है, ऑल प्राइवेट एंड इंश्योरेंस ऑथराइज्ड काम ते। फ्री लीगल एडवाइस लई कॉल करो 0383857748 ते। सिंक स्मैश रिपेयर, 8 ग्रेस वे, रेवन हॉल।

पुण्य दर्शन में आप हैं अपने दास के साथ। तो ये जो उत्सव हैं, ये फेस्टिवल्स हैं, आपको क्या लगता है भगवान ने अपने लिए बनाया है?

कतार बनाए खड़ी रहती हैं, उनका नंबर ही नहीं आता सेवा के लिए। ऐसे भगवान को हम क्या दे सकते हैं? ना हमारे पास शुद्ध देसी घी है, ना शुद्ध विचार हैं, ना शुद्ध भाव हैं। कहीं ना कहीं मिलावट तो है मित्रों, किंतु निराश होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 9वें अध्याय में एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रेष्यति। इसको ना याद रख लो, भगवान जब किसी को कृपा देते हैं तो वो ये नहीं देखते कि ये अमीर है, गरीब है, छोटा है, बड़ा है। वो तो हम देखते हैं कि हम सो एंड सो कंपनी के मालिक, हम भगवान को सोने की थाली में 56 भोग अर्पित करेंगे। भगवान हो सकता है उसको स्वीकार ना करें, स्वीकार कर भी सकते हैं, आपके भाव पर ये निर्भर करता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, इसका अर्थ क्या है इस श्लोक का? भगवान कह रहे हैं जो भक्त मुझे प्रेम और भक्ति के साथ, याद रखिए प्रेम और भक्ति के साथ, एक पत्र यानी पत्ता, तुलसी का पत्र, एक पुष्प, एक फल या थोड़ा सा जल भी अर्पित करता है, उसे मैं प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूं। वाह, कितने दयालु हैं भगवान। यानी इस श्लोक में जो शब्द है भक्त्या, यानी भक्ति के साथ, भगवान हमारे द्वारा चढ़ाई गई वस्तु की कीमत नहीं देखते, वे हमारे हृदय में भाव देखते हैं। इसीलिए किसी उत्सव में बहुत बड़ा आयोजन करना ही भक्ति नहीं है। यदि कोई व्यक्ति प्रेम से भगवान के चरणों में एक फूल भी अर्पित करता है, भगवान के लिए थोड़ा सा प्रसाद बनाता है, उनका नाम जपता है या किसी भक्त की सेवा करता है, तो यही उत्सव का वास्तविक भाव बन जाता है। हमें स्वयं से पूछना चाहिए कि आज मैंने भगवान को क्या दिया? केवल फूल, फल और प्रसाद, या अपना थोड़ा सा समय, अपना मन और अपना प्रेम? इस पर चिंतन जरूर कीजिए कि मैं भगवान के लिए क्या कर रहा हूं। भगवान तो कभी हमसे कुछ मांगे ही नहीं। कोविड में आपको पता ही है, ऑक्सीजन के सिलेंडर किस भाव मिल रहे थे, हमें ऑक्सीजन की वैल्यू पता लगी कि कितनी कीमती है। पर भगवान तो जब से सृष्टि की रचना हुई है फ्री में ऑक्सीजन दे रहे हैं, उन्होंने तो कभी बिल दिया नहीं आपको। क्या इसके बदले हम अपने भाव से, सच्ची भक्ति से पत्रम पुष्पम फलम तोयम भगवान को नहीं दे सकते? जब ये भाव आपके अंदर आ जाएगा तब देखना उत्सव का जो मोटिव है वो बदल जाएगा, उत्सव का आनंद दुगना तिगना हो जाएगा। आप थोड़े में ही संतुष्ट होना सीख जाएंगे। चलिए आपके लिए एक सुंदर सा भजन ले करता हूं और लौट कर आता हूं थोड़ी देर में। मैं यूं गया यूं आया।

पुण्य दर्शन में पुनः आपका स्वागत है। तो मित्रों, पुण्य दर्शन में पुनः आपका स्वागत है। तो मित्रों, अब हमारे पास उत्सव को देखने का एक नया नजरिया है, एक नया एंगल है। उत्सव आया, हमने भगवान को याद किया, उनकी कथा सुनी, कीर्तन किया, प्रसाद बनाया, भगवान को अर्पित किया। किंतु क्या उत्सव यहीं समाप्त हो गया? शायद नहीं, क्योंकि असली उत्सव तो तब शुरू होता है जब भगवान के प्रति हमारा भाव हमारे रोज के जीवन में भी दिखाई देने लगे। मैं रेगुलर मंदिर जाता हूं, पिछले 20 साल से मंदिर जा रहा हूं, किंतु कब? सिर्फ जन्माष्टमी के दिन, सिर्फ नवरात्रे के दिन, सिर्फ दिवाली के दिन, एक दिन पूरे साल में? पर हूं तो रेगुलर ना, ऐसे उत्सव नहीं बनता। वो उत्सव नहीं है मित्रों, वो एक फॉर्मेलिटी है। अगर उत्सव के दिन हमने भगवान को याद किया किंतु अगले दिन फिर वही भगवान को भूल गए, तो हमें एक बार फिर सोचना चाहिए कि इस उत्सव से हमने अपने जीवन में क्या पाया। भगवान भगवद गीता के 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में यही तो बता रहे हैं कि भगवान को हमारे प्रेम की आवश्यकता है। आप मंदिर गए, साल में एक बार गए, तो कोई भगवान पर या किसी मंदिर मैनेजमेंट पर एहसान नहीं किया आपने, वो एक फॉर्मेलिटी की आपने कि आज फला फला उत्सव है तो मंदिर जाना बनता है, चलो सब लोग जा रहे हैं हम भी चलो। भगवान हमारे प्रेम की आवश्यकता है, भगवान हमारे प्रेम के भाव के भूखे हैं। इसीलिए इस उत्सव में हम भगवान को अपना थोड़ा समय दे सकते हैं, उनका नाम ले सकते हैं, उनकी कथा सुन सकते हैं, किसी भक्त की सेवा कर सकते हैं, और सबसे जरूरी जो भी करें प्रेम और भक्ति के साथ करें, क्योंकि उत्सव का अर्थ केवल घर सजाना नहीं अपना हृदय भी सजाना है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी पिछले दिनों कितने उत्सव होकर हटे हैं और आने वाले उत्सव बिल्कुल हमारे दरवाजे पर खड़े हैं। कुछ ही दिनों में उत्सवों की झड़ी लगने वाली है, तो मैं चाहता हूं कि उत्सवों में अपने घर की साफ सफाई, दिवाली आई है व्हाइट वॉश करवाएंगे, नए कर्टन बदलेंगे, ये भी जरूरी है, बदलिए, किंतु उसके साथ साथ अपने हृदय की भी सफाई कीजिए, हृदय का मार्जन भी जरूर कीजिए, अपने हृदय को भी सजाना जरूरी है। उत्सव का अर्थ केवल भगवान को फूल चढ़ाना नहीं, बल्कि अपने जीवन को भगवान की भक्ति के फूलों से सजाना है। तो आज से जब कोई उत्सव आए, अपने आप से एक छोटा सा सवाल जरूर पूछिए, आज मैं भगवान को क्या दे रहा हूं? एक फूल, फल, थोड़ा सा जल, और अगर इसके साथ हम ऐड ऑन कर दें प्रेम, श्रद्धा और भक्ति, भगवान के चरणों में पहुंच जाएगा ये सब कुछ। तभी हम सबको इन सभी उत्सवों का फल प्राप्त होगा। इस पर कीजिए विचार और मुझे दीजिए आज्ञा, फिर लेकर आऊंगा आपके लिए पुण्य दर्शन। मैं हूं आपका दास, नमस्कार।

रोड्स ऑनर कैंपेन सिर्फ सीमित समय ले हुन नवा BYD कार ले आओ शानदार ड्राइव अवे ऑफर्स दे नाल। BYD C-Line 7 प्रीमियम सिर्फ $54,990। BYD C-Line 8 डायनामिक FWD सिर्फ $56,990। ते BYD Shark 6 प्रीमियम सिर्फ $57,900। एक खास ऑफर 1 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक ऑर्डर करने वाले लिए है। डिलीवरी 31 अक्टूबर 2026 तक। हो जानकारी ले आज ही BYD कैरोलाइन स्प्रिंग्स नाल संपर्क करो एंड मेंशन रेडियो हांजी। BYD ऑन रोड्स ऑन अस। कंडीशन अप्लाई।

0: 0410 045 555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड मेल्टन।
1: आ किथे वज गई तेरी गड्डी?
2: गड्डी ता ठीक हो जू पर इंश्योरेंस वालिया नू लीगल वालिया नू एथे परदेस विच समझाऊंगा किवे?
1: तेरे वांग किन्ने ही अपने भैन भरावां दी टेंशन मिंटा च दूर कीती है सिंह स्मैश रिपेयर वालिया ने। इन्हां दे कोल अपनी मां बोली च काम करन वाले लॉयर्स दी फ्री ऑफ कॉस्ट टीम, ऑल मेजर एंड माइनर एक्सीडेंटल लाइफ टाइम वारंटी नाल वर्क एंड पेंट, फ्री लोन कार दी सर्विस मिलदी है, ऑल प्राइवेट एंड इंश्योरेंस ऑथराइज्ड काम ते। फ्री लीगल एडवाइस लई कॉल करो 0383857748 ते। सिंह स्मैश रिपेयर।